अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, इन बिन सब

जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नु असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इस नु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहंदे ने तदर दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ए ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ दी धर्म धृग तांग दागड़ दी दिम दिरना, बागड़ दी ब्रिते बांग तागड़ दी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानिया और ताना लगानिया। कुम किरना नाल दे ताल दागड़ दी दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना इसनू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है। राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे डागड़ दी दे ताल, ताल दे विच तुसी घुम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

ओ जी भाई है कि मनुख आया है सेवा सिमरन परोपकार करके उस प्रभु दे नाल मिलाप करना है, अपने जीवन नूं पवित्र रखना है, श्वास रखना है। जिस तरह समुंदर दा पानी हवाड़ बन के बदलां दी राही जाके दूर वसदा है, जेड़ा जल अपने मालिक वल चल पैंदा है वो कदे ना कदे जरूर फिर समुंदर विच आ मिलदा है। इसे तरह साड़ी आत्मा भी परम आत्मा तो विछड़ के आई है। जिन्हां ने अपने मन नूं नाम जप के सेवा करके सदा निर्मल रखिया है, क्योंकि साड़ी आत्मा एक बूंद है, ओ परमात्मा एक शव सागर है। जिसलई गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने कहा, भाई सदा इस बूंद नूं निर्मल रखो, नाम जप के सेवा करके सिमरन करके। जिवें जल आ रहा है, जेड़ा ता जल अपने मालक नालों विछड़ जांदा है, गड़ियां विच पै जांदा है, टोयां विच पै जांदा है, आप देखदे हो उस जल दा की हाल हुंदा है। उस जल ते काई आ जांदी है, कीड़े पै जांदे हन, मुछक मारन लगदा है। इसे तरह जदों असी परमेश्वर दे सिमरन तो नाम तो विछड़ जांदे हां, तां साडे भी मन दी इही हालत हुंदी है। इसलिए रब दे प्यारे जे होंदे हन, उन्हां ने नाम नूं ही अपने प्राणा दा आधार बना दिया है। नाम विसरे उन्हां दी मौत हो जांदी, क्योंकि जे श्वासां दी पूंजी समाप्त हो जावे तां इस शरीर दा अंत हो जांदा है। ते जे परमेश्वर दे नाम नूं नहीं जपदा जेड़ा मनुख, उहदी आत्मक मौत हो जांदी है। इसलिए आत्मक जीवन रब दे प्यारे जीउंदे हन, जिस करके ए

भाई रूपा जी नाम दे रशिये, जिना ने धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी पासों नाम दी दात प्राप्त कीती। सोना नाम दा रंग चढ़िया है अमृत वेले जाग के, इशनान करके नितनेम करदे हन, अते दिने जाके लकड़ां कट के लियाउनियां मुल वेच के अपने घर दा गुजारा करना। अज लकड़ां कटन लई जा रहे हन, गर्मियां दे दिन हन, एक कड़ा जल दा भी नाल लै लिया भई प्यास लगदी है। घरों प्रसाद छक के गए सी, ते जदों थोड़ा जिहा चिर कम कीता ते प्यास लगी, ते आके कड़े दा जल वेख्या, जल ठंडा शीत वर्गा है, ते अपने पिता नूं बेनती करदे हन, भाई रूपा जी भाई ये जल साढ़े पीण दा नहीं, ये जल गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जे आके पीवन तां कितनियां बख्शीशां होणगियां। मन विच ठान लिया, हे सतगुरु, हे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह, हे मीरी पीरी दे मालक, पहला जल तू छकेगा ते फिर मैं पीवांगा।

उस वेले बाबा दीप सिंह जी साबो की तलवंडी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बीड़ां दी लिखाई कर रहे सन, पर जदों उन्हां नूं अमृतसर तों आए एक गुरु दे सिख ने हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दी गल दसी तां उन्हां ने कलम छड्ड के दोबारा फिर तेग चुक ली अते जख्मी शेर वांग दहाड़ उठे।

सेवा कर ले। महाराज बड़े खुश हुए, कहते चलो आज इंज ही ठीक है। कहते पिंड कट्ठा होया सी सो राम नगर, पिंड के मुखी एक नू फड़न ते कहण आ दो सिख तेरे नाल, दूजे नू फड़न आ तीन सिख तेरे नाल, तीजे नू फड़न आ दो तेरे नाल, भी इन्हां नू घर ले जाओ, आराम भी कराउणा प्रशादा भी छकाउणा, या प्रशादा छका के फिर मोड़ देना सेवा भी, इंज घरों करी हो जाएगा सौखा काम। कहिंदे उसे बरादरी का एक सिख बहुत गरीब उहदे विच खड़ा सी, मुखिया ने उहदी भी बांह फड़ ली, तो जदों बांह फड़ ली वेख्या तो गरीब बड़ा, कहिंदे उहदे नाल ना दो नहीं तोरे, पंज नहीं तोरे, एक तोरिया, कहिंदे एक दी तू सेवा। हुण सारा कट्ठ होवे कट्ठा, सामने होवे कलगियां ला है जी, पिंड होवे कट्ठा, तो कई वारी ना नहीं हुंदी। कहिंदे आऊं सिख दी बांह फड़ ली, उस सिख का ना इतिहास च आया भाई मिलागर सिंह, जिहड़ा उस घर गया, घर वाले का ना नहीं इतिहास पता लगा, जिन्हें खड़े है गरीबड़े सिख ने उहदा ना नहीं, जिहड़ा गया उहदा ना भाई मिलागर सिंह है। जदों कहिंदे ओ अपने गुरु गोबिंद सिंह दे सिख नूं घर ली आ रहा है ना गरीब बरादरी दे कहण ते, राज सोचा सोचदा जांदा पिया खावांगा की, घर है कुछ नहीं। कहिंदे अपने घर ले जा के बंदे नूं जिवें कोई सोच लगी होवे की खुआवां की खुआवां, किन्ना दो चार मिनट सिख खड़ा रहा, सानू कोई अपने घर जाके जे खड़ा कर दे उत्थे काम शुरू हो जांदा है। आ भी निर्दन नूं पालना है भाई मिलागर सिंह, कहिंदा गुरु के प्यारिया बिठाएगा नहीं। कहण लगा सिखा मेरे घर चंगी चादर भी नहीं, जिहदे ते तैनू बिठावां, ते मोढे ते ना हजूरिया पिया सी। सिख ने ओह फड़ लिया, कहिंदा इही बिछा दे ये ते बह जाने। सिखा ये परना मैल है झूठ है। सिख ने जल मंगवाया।

महा पापी लोगों नु वेखिया गुरु की सरदल ते मथा टेकदिया कई बार वह भी चुनचुनी लेंगे वह भी एक थराग महसूस करते हैं चुनचुनाहट भी जीवन च महसूस करते हैं रास्ता आ जाता है लेकिन दूजे रसा च फसे होने करके वह इस रस न मान के भी छड़ जाते गुरमुख वेखदा रस न कहता फिर यह छड़न वाली चीज तो है सारे शरीर के अंदर एक निकी जी मिठी जी कंबनी छेड़ के मालिक वो रस दर्साउंदे ने अपने भगत नूं भगत जी कहिंदे ने वो रस मैं वेखिया ते फिर लै ही लिया माण ही लिया फिर उस नूं अपने जीवन च रचा ही लिया सत्तर दोए भरे अमृत सर दिख तो मार कढ़ाव हुण मैं इस तों पिछा आउण नूं तैयार नहीं वैसे तो ज्ञानी दूजा अर्थ भी करते हैं कहते हैं हूं मैं दोबारा जमण की लड़ नहीं पाछे और बौर न आवन पाव हूं मैं मुड़ के पिछा आने की लड़ नहीं पेगी लेकिन एक सूझवान विचारवान यह भी अर्थ देते हैं वह कहते हैं हूं इस तो पिछा मैं मुड़न तैयार नहीं पाछे बौर न आवन पाव जो अवस्था मैं मिल चुकी है मैं इस तो पिछा हटन तैयार नहीं हूं एक बंदे अमृत का रस ही ना आया हो बस की गल नहीं अमृत छक लिया हो अमृत का रस ना आया वो गल हो रही लेकिन जिस बंदे बाणी पढ़न का नाम जपण का अमृत छक के रहत बहत रखने का रस आ गया है वह रहता किवें छेगा वह बाणी किवें छेगा वह नाम किवें छेगा बड़ा मूर्ख होगा जो छेगा या तो उन्हें रस माने ही नहीं तो एडा कीमती रस आ जाने तो बाद छड़ दे कौन ऐसा कमलापण करेगा भगत जी कहते मैं इस अवस्था तो पिछा हटन तैयार नहीं थले आने तैयार नहीं जो रस आया है जो

आओ किसली एक नाम ते आना अपनी पत सेती कर जाओ प्राणी एको नाम ते आओ एक नाम नू ते आ एक नू ही हिरदे अंदर वसा एक नू हिरदे अंदर वसाएंगा ना संसार विच आउना तेरा सफला हो जाएगा एक ते आसरक एक ते आसरखन वाला मनुख ओ हर वक्त खुशहाल रहिंदे हर आस मरात पूरी हुंदी जिना एक ते भरोसा रखदा एक मनुख बड़ा ही सयाना सूझवान चंगी बुद्धि वाला एक बाग विच चला गया ते बाग विच जाके वेखदा कई प्रकार दे फुल खिड़े ते की नजरी पिया एक पवरा आया पवरा आके हर फुल ते बैठद चंद मिट बैठद फिर उड़ जांद हर फुल नू इसने अपनी छो दिती ते हर फुल कोलों छो प्राप्त कीती सारा दिन बीत गया ए मनुख वेख रहे शामा पै गई रात टलण नू आई इस मनुख दी निगाह एक होर फुल ते पई जो कि चंबे दा फुल है ए मनुख उसनू पुछदा है हे फुल ए पवरा सारे फुलां ते बैठा है सारिया फुलां कोलो सुगंध इसने लई है कि तेरे पास क्यों नहीं आया तेरे विच की कमी तू भी उन फुलां दी तरह बड़ा खूबसूरत है सुंदर तेरा रंग है तेरे विच भी खुशबू है तेरे विच भी कोमलताई है ए तेरे पास क्यों नहीं आया कि ए तेरे तो नफरत करदा है आज अगो जवाब मिले उस फुल ने हस के कहा कहिंदा गल ऐसी नहीं कि पवरा मेरे तो नफरत करदा है बल्कि कि मैं पवरे तो नफरत करना इंसान बड़ा हैरान होया तू पवरे तो नफरत करना ए किवें हो सकदा है आखिया सुन पवरा वेख सारा दिन सारिया फुलां ते बह के खुशबू लैंदा ते उड़ जांदा वह कई कोल बहिंदा ते उड़ जांदा सारिया दी खुशबू लैंदा ते फिर उड़ जांदा इस वास्ते मैं उसनू अपने पास नहीं आउण देंदा क्योंकि वह एक दा नहीं कई दा बने एक ते भरोसा आस नहीं इसलिए मैं उन्हूं अपने कोल नहीं आउण देंदा जिहड़ा एक दा नहीं बनिया वह मेरा किवें बन सकदा है इसे तरह हे गुरसिख जे गुरु नानक दा दर छड के तू होर किसे दर ते जाना तू भी चंगा नहीं लगदा जे एक ते आस रखे एक ते भरोसा रखे ते तेनू इथों मान प्राप्त होवे जे एक ते आस नहीं होर बहुते दर फिर के फिर इस दर ते आउना ते फिर तेरे फिरन दा लाभ की क्यों ना एक दा आसरा लवे क्यों ना एक दा दर फड़े एक दा दर फड़ के बह एक नू त्या एक नू ही मान अंदर वसा एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटी है जम की फासा एको जप एको सलाह एको सिमर एको मन आए एक नू ही मान अंदर वसा ते जीवन सफला हो सकदा है करो रसनन पवित्र मिलके पढ़ी।

ग्रस दे चमेले ग्रस दी चिंता इउं प्रतीत हुंदा है चौहीं पासी अग्नि दे भांबड़ मचदे हन पर बचदे कौन हन रखे केड़े जांदे हन सुरक्षित कौन हुंदे हन साहिब पातशाह अगली तुक विच फरमाउंदे।

पवित्र बाणी इसे बाणी दी बरकत ने बुद्धू दी बुद्धि चमका दिती। इसे बाणी दी शक्ति ने पत्थरां चो नहर वगा दिती। इस बाणी बन्ने लाया सी मक्खन दे डुबदे बेड़े नूं। इस तरनी लखां तारे ने गिण दसां केड़े केड़े नूं। ए ख्वाश हमेशा रहंदी ए कोई गुरमुख नदरी पै जावे। ओ पढ़े अगम्मी बाणी नूं मेरे मन दी।

जिन्होंने बाणी नु कुछ समझिया है, कीर्तन कर रहे सन ना इस तो पहला ते पढ़ रहे सन, धन धन गुरु जिन नाम अरातेया आप तरिया, जिनी डिठा तिना ले छड़ाए, सवाल की तै बाणी की है अजे तक समझ नहीं आई, बड़ी बार कीर्तन सुने, बड़ी बार कीर्तन कीता पर अजे तक बाणी दा नहीं पता लगा कि बाणी की है। हुण किहदे कोल पुछिए बाणी की है, ते सात संगत कई कई गुरसिख कई बीबियां जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पाठ करदियां ने, ते जदों पाठ करन तों बाद जितने सफे हो जान, कई लोग कागजां दियां निशानियां रख देंदे ने, ते जिसने कदे प्रतख गुरु की देह समझिया होवे, साडी अख च कोई एक तीला चला जाए ते सानू सारी रात नींद नहीं आउंदी। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। सवाल कीता है ए बाणी की है, जिसनू बाणी दा पता है उसने कलम चुकी ते लिखना शुरू कीता। सानू एक सनेहा दिता बाणी पढ़न वाले हो, ए बाणी की है। साडी नजर ते सिर्फ इथों तक पहुंची है कि ए अखर ने ए सफे ने जिन्हां नू असी वरके कहने हां, जिन्हां नू असी पत्रे कहने हां, जिन्हां नू असी कई वार होर सुचज्जी बोली विच अंग कहने हां। ते सात संगत आ वेखो, तन है इसकी कलम ते तन है ए लिखण वाला, कहण लगा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते फिर की है। ते सात संगत अज तू ए प्रण कर लो, जो मैं कहण लगा अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब नू इसे तरह समझना। जिसने कलम चुकी है ओ लिख रहा है, ओ कहंदा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते जिदे सामने लिख रहा सी ओ कहन लगा फिर की है। ओ कहंदा जो मैं वेखे ओ मैं लिख रहा, जो मैं वेखे ए अखर नहीं ए वरके नहीं ए सीना ए गुरु नानक दा। कमाल है, मैं ते अखर नहीं वेखे, मैं वरके नहीं वेखे, मैं जदों ही गुरु ग्रंथ साहिब तो रुमाला चुकया, मैं गुरु नानक दा सीना गुरु नानक दा दिल नजर आया। तैनू किवें कागज नजर आ गए, तैनू किवें अखर नजर आ गए। ए अखर जितने सारे ने
सचखंड दे समझो तारे ने दूजे तारे तां टुट जांदे ने आकाश दे तारे तां टुट जांदे ने पर ए तारे किवें टुटन इन्हां तारिआं नूं वी लोकां ने तोड़न की कोशिश की पर ए तां अरश दे तारे नहीं ए तां दरगाही तारे ने ए अखर जितने सारे ने सचखंड दे समझो तारे ने सुखमनी चन बने आईए सुखमनी सुखमनी साहब चंद्रमा वांग शीतल है सुखमनी चन बने आईए ए जप जी सूरज प्यारे ने हुण अगली गल बड़ी कमाल दी ओ कहंदन के ए वरके स्वर्ग दी धरती ने ए वरके स्वर्ग दी धरती ने ए स्याही जन्नत दा पानी है ए बाणी सच्ची बाणी है अमृत दी कोई ए खाणी ए ओ पवित्र बाणी बाणी बारे कुछ पुरातन लोकां ने ए ख्याल अपना प्रगटाया कि ए बाणी किते उथों तां नहीं आई जिथे समुंदर दे विच भगवान विष्णु आराम कर रहे ने ते लक्ष्मी उन्हां दी सेवा कर रही है किते बाणी उथों तां नहीं आई किसे ने ख्याल जाहिर कीता जिथे शिवजी शंकर जी कैलाश पर्वत ते तपस्या करदे ने कि बाणी किते उथों ना आई होवे एक होर ने ख्याल दा प्रगटावा कीता आकाश विच कोई ऐसा मंडल ना होवे आकाश विच कोई ऐसी धरती ना होवे जिथू बाणी आई होवे कहंदे ने दिल दियां गहराइयां विच पहुंच जाओ बाणी दा जिक्र करन लगा उस खीर समुंदर चों गंभीर समुंदर चों समुंदर तों वी थले चले जाओ शायद कोई ऐसी थां होवे उस खीर समुंदर चों गंभीर समुंदर चों कवला चू ब्रह्मा सन कई रंग विखाले ने शायद कोई कवल जिथों ब्रह्मे ने जन्म लिया शायद कोई उस थां ते ऐसा केंद्र होवे जिथों बाणी आई कवला चू ब्रह्मा सन कई रंग विखाले ने वाह चोज निराले ने ते सात संगत ऐसरा ध्यान देओ एदियां रमजां कुछ गुजियां ने नखरीलियां रुमकां ने नशरीलियां ठुमकां ने कुछ गुजियां लाईयां ने रमजां समझाईयां ने ते स्याही की है जिस स्याही नाल बाणी लिखी गई ए कजली राणी है कोई मस्त दीवानी है ते अखर की ने सोहणी जी जुल्फां विच इस मोती गुंदे ने ज्यों लटकन बुंदे बुंदे ने ते आ बड़ी कमाल दी गल है हथ प्रेम सुराही है मस्ती च पिलाई है तुसी भी तो प्रेम दी सुराही पी के ही बैठे हो ना हथ प्रेम सुराही है मस्ती च पिलाई है
ਅੰਗਦ ਦੇ ਅੰਗ ਲਗਾ ਅਮਰੂ ਤੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਨਾਨਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਏ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ੋਂ ਲੱਥੀ ਏ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਲੱਥੀ ਏ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਏ ਇਹ ਜੋਤ ਇਲਾਹੀ ਏ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜ ਕੜ ਕੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਇਹ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਏ ਇਹ ਜੋਤ ਇਲਾਹੀ ਏ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜ ਕੜ ਕੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਏ ਤਾਂ ਬੀੜ ਬਣਾਈ ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਈ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੇ ਪਾਵਾਂ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਅਰਾਦੇ ਆਠ ਪੈਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ।